0: पागल?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

तारो कोई छनी मुसाफर रेणु रे जीज दने रो। अरे माता रो वरे बारो मास भेनो रो वरे छठी समास तन की तरिया तीन दिन रो वा फेर करे रे घरवास।

0: अरे तू किस रे मारो भाई बंद को तो वाड़ा तारो कोई छे नी रे भड़ा तारे डीले प्रेरो खेच लिए कपड़ा
1: हाँ।
0: अरे आंग वाजे लग जाए डपड़ा दाड़ो सुड़को मार ब्यान जल्दी पाड़ा कतिन के दिले जान डूंगरे माई गाड़ा
1: बोल भाई
0: होटो आनान क्या मोटो पीला कांटो काड़ा पीले दारुन सारी रात जोई सारू बाता बात पड़ा।

0: जन्मे माता ने ई मानव घणो मोटो छ एर कीमत घण जबरदस्त
1: घण मोट छ
0: अरे कहने का कह दिया कित्ता बजाऊं रे ढो ये एक सुवास तीनी ताले रोमोट
1: खरोच खर्चा
0: ई मानव छ जो पशु का अपनिया हो नर का कुछ न हो अरे नर ने करनी के नर रो नारायण हो
1: खरोच खर्चा
0: नर रो नारायण रो अपने हाथे में छ
1: खरोच
0: सरगे जा रो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: नर के पड़े रो अपने हाथे में छ
1: खरोच खरा
0: मां भेने काकी दादी केता ने शाबाश करा रो अपने हाथे में छ
1: अरे भाई वाह
0: आणि ओळो सोळो बोलन मार खान धोळो सोबेन गटारी कन पडेरो आपणे हाते एम छे
1: वाह भाई वारे
0: सेवा।

0: लेने को हरि नाम, देने को अनदान, चलने को निनता, डूबने को विमान।
1: बोल भाई बोल।
0: जेन डूबदार से तो कम मक्कार सरना एक करोड़ थट रहनु गुर गुर गुर गुर मुस मुस मुस मुस करते हनु।
1: देख रे भैया।
0: जेन जो को नान क्या पनो लेन जेन तुकारा महाराज को कुछ। नान पन देगा देवा, नान पन देगा

0: क्यों नो छा हाँ। अरे कल करे सो आज कर ले, आज करने का अभीज कर ले
1: हाँ वा।
0: अच्छी बातें सुझको आज कर लो
1: ईमानदी
0: हाँ? बातें सवार कर लो
1: बरोबर
0: प्रभु रामचंद्र भगवान
1: हाँ?
0: अरे रावण मारन पार दिनो
1: जेड़
0: सल समणे ने मेलो
1: हाँ?
0: अरे लक्ष्मण राजनीति कूच लानो रे तो लक्ष्मण ने जो रावण क्यों अरे सवार कर रो आज कर लन आज करो अबज कर लो
1: बरोबर
0: लड़ाई वेर भी तो सवार कर लो
1: हाँ?
0: आची व्याते वेर भी तो आज कर लो पानी रंग बांध रे पाल
1: हाँ?
0: मरे रंग जिगल रे काल तारो डूबे रंग कतुई ढाल
1: हाँ?
0: तारो बाप बेटो अंग मोटो काल अरे झल्ली जरा मत कर रे हाल
1: हाँ?

0: जगे नजको काल खादा छ। अरे हरि नाम ले वाले ना नमस्कार कर छ।
1: खरण
0: के ताणी मारे गोपाल कृष्ण रो नाम, प्रभु राम रघुवीर रो नाम, माता पिता सेवा। अरे जगेर माई कूद चाणु, ये जन्मे माता ने मर्जो रे मर्जो, पण जरा कीर्ति रूप वर्जो, मर्जो पण कीर्ति

0: बैठा
1: हाँ।
0: पत को तो अपने सिरेरे का जो रोग आगो
1: हाँ।
0: अरे डॉक्टर के चले गए
1: हाँ।
0: डॉक्टर के सहे मन घणो को ताप आ रो था डॉक्टर को नाड़ी तपासन जुठो
1: हाँ।
0: डॉक्टर के लागो भाई 105 डिग्री ताप चढ़ गो रे
1: हाँ।
0: आज 2-3 डिग्री चढ़ गो तो तू डगर जाई छी
1: डगर
0: जाई छी के तो काई केड़ी कामन को नहीं जारो चार नार खांदे डगर जाई छी
1: हां
0: बस काई करू साहब 1000 रुपया दे दे
1: ई
0: दवा दारू ले जो
1: खानी
0: तू को पत पाल खाटो खरो मत खोग के दिनो
1: खाऊनी
0: ठीक सन के ताणी 1000 रुपया आयो
1: हाँ।
0: घर आयो अरे भेसिर जामन 3 दाड़े में तो पिल दो 3 दाड़े जामन पिल दो मार बारो जो को हेड़ती सोई सड़ी दो हांडी वड़ा मुंडो को
1: खरोस खार
0: हांडी वड़ा मुंडो को वेगो जो को वेगो ढगर को
1: हाँ।
0: ढगर को तो कती केवड़ी व्यापारन को नहीं जो
1: हाँ।
0: सारी ताने खाड़ी करा लागो चार नार खांदे पर ढगर को
1: वाह भाई वाह
0: येरे सारू काय के मिले छ।

0: के मिले छ। अरे भगवान संसारो पत कुन सो छ
1: कुसो छ
0: डाक्टर गनेरो पति वेगो खटो खरो न खदो तो ताप रखदा छ। डाक्टर संसार ज्ञानी श्री भगवत गीता कजखंड रामायण हरिपाठ तुकाराम बाबारो गाता नौनाथ वास्तानी मारे गोपाल कृष्णर 84 तोड़े र वरे पायरी कर बेसर तो पत कुन सो छ
1: कुसो छ।
0: अरे आपरे घरेरी चटनी भाकरी छरला केरी बना दधा केरी। अरे दूसरे घरेरी सिरापुरी छरखा केरी। अरे आपने घरेर मांद सुंदा नारा तने लागी रे लंगाए पार। अरे दूसरी नारी रो दीदने रो प्रेम झूठो जो बेटा संगत क्रिये जो रो कर्म फूटो देवे कंसरे त्राजुन कांटो। अरे तोला उंदार कलियर बेटा नपन

0: मोड़ सा कबीरदास महाराज के मोड़ सा अरे कहने का कह दिया कितना बजाऊं ढोल।
1: वाह भाई वाह,
0: एक स्वास्थ्य नहीं तालाब का मोल
1: बरोबर।
0: अरे तारे तार घरेर माल कनक दी पानी इंदर की
1: है
0: तो पानी की जन वो तो कोई तो भार ना भाई ना थे दी बोल रहे भी है तो तू काई करे ची मार माल कनक दी कोई तो बोल रहो सा कन घर कुराड़ी आलाई ची वो ना मैं थार करूं बुर के
1: खरो खर।
0: अरे वो भाई ना थे दी बोल जाए पर तुझको पेटे में कनपना लाई ची अन बेटा कान काटे कुटे कुतरा नहीं गली गली में हिजरा नहीं नन्नर नन्नर कर तो हिंडे ची तो ना लात छूटे नहीं। अरे गरीब की जोरी सबकी भाभी गरीबेर माल कर शेर भोजाई लागत है क्यों मैं भी तुझे कान काटे कुटे कुतरा ना लोग घर टुकर ढूंढूं मारी भी माल करें जबरदस्त भेड़ गोस है वो रोई काम ओवड़ी चारो मारो ये ओवड़ी चारो बला लागत बेटा के। अरे अपने बेटे के सिर मुंडाए छुरा लग जाए दूसरे बेटे के गर्दान तोड़े जरा शर्म नहीं आए। अपन मालकने इज्जत को तो मोट अन गरीबेर को तो नानकीज काय बेटा। अरे कीड़ी थी ब्रह्मदेव इतनी इज्जत सारक छ कारण केन काय इसु

0: करना चाहे माटी। अरे दोपहर माटी दोपहर तुनी माटी दोपहर तू छोड़ दिनो काटी।
1: वाह भाई वाह रे।
0: अरे ढूंढी दो दारूर भट्टी पीले ताने अंधारी खान घरदान तोना को तट्टी मालकन हेटे दी उठी भारान दीटी तो मार भ्या धोती घोड़े तुनी छूटी मालकन तो देख तानी बरकान धाटी।

0: हाथम कानी लावा ये छटाक ते लाव जन आड़ दाड़ खानो। अरे नीलजाम आटा पंचे 40 दारू छोड़ दे, आटा पंचे 40 रुपया रो एक किलो तेल आया कनक, एक धोवो तेल हांडी में खलाऊंगा ना के। अरे कालो भूर पानी खोरे गुलाबेर फूले ना तार बेले बेट बेट बटा रही है
1: खरोज खैर
0: मालकन गुलाबेर फूले ना ही रही है तारे ऊपर कर्ज कोनी व। अरे जोजार गले माय मंगलसूत्र भान मेलो चीज लाज छूटनु लागी है तो ना। अरे कांदी सोने दागिना गले में घाल द मालकन चम चम चम की तो तारो भगवान कल्याण करिए। अरे हिजड़ा रावला दूसरे तांडरी साउंड देखन बार शब्द दियाई घरेर मालकनर भूखे मारे तार सुगो पापी जगेम छेनी।

0: सदा सुखी काई के छ। अरे इने काम यनी बेटा हूं
1: ना
0: नाज को कीर्तन भजन करते डिग्री ने छ 10 12 रुपया ले ले छ। उचलो जा उचलो जा खोद के बेटा ना तो काम करके कळ छ। अरे खोदे ना आए कोन तिरे पांच अंगली बरोबर छनी हम कते दी आए छ। हमें वैकुंठ वासी आलो या।

तो ना लकड़ी ओढ़ रहा तो सुतारे समझ जाणू सुतार छोलन बरोबर करे छ लोवा ओढ़ रोकन केन कतो लवारे गन जाणू छोलन वन को तपान कूटन बरोबर करे छ अरे तू ओळा वागरो तो बेटा कीर्तन भजन पोती प्राण सामा बरोबर सुदो वे जाई छे कन संगत करो रे सज्जन की बढ़त बढ़त बढ़त जाए संगत करे दुर्जन की तो घटत घटत नीचे आए संगत करी छेली गजकी मनमान फल खाए।

अरे हाथ जोड़ना नामदेव महाराज कह रो रे सेना, अरे भगवान नाम ले लो रे भगवान, एक नाम ले लो रे भगवान, रे भगवान साई वेदा है तमे ना। अरे काई पड़े नी रे, काई कम पड़े नी रे तुम्हारे जिनगानी ना।

0: सेवा की दी रे अनुसुया माता ब्रह्मा विष्णु महादेव तो चलना ये सता। अरे कली युगे माँ बनना की गीता
1: वाह भाई
0: अरे ब्रह्मा विष्णु महादेव आए अनुसुया घर नगी भिक्षा लाए माता भार नितो सत वाले जाऊ तार
1: देख रहा।
0: अरे अनुसुया माता गिरे घरे माई पति देव रो चरण रो पानी लाई तीनी देव पर पानी छिटकाई। अरे तीनी रो तो बालक बनाई तीन हाथम तीन हुंडा धारण माता पाने घर नहलाई बाई।

सेवा सेवा कना कांदे पाड नाच कोनी क्यों रे जलम दिवाली माता तोन में अनुसुया माता कुणसी देवें धुकेन की थी कोनी की काई की दी वो ब्रह्मा विष्णु महादेव मानव रो भाई दानव रो देव रो भाई मानव रो बाहरी बातें सामने आए तो वो तो बरोबर करस खूब फेरस भाई बाहर अरे मारो माटी को तो बाहर खूब फेरस भाई लोग देवे मानसे ना दोरी फिर भी ते भौरियाला दोरी फिर भी ते भौरियाला बाहर

0: बाईने डिलेम देवा आवत छ
1: हां
0: बाईने डिलेम देवा राज भगत भी खेले छन वही खेले छ ठीक छ
1: करो खर्च
0: अरे बाईर डिलेम देखु आमरे भा सरपंच रे बाई राईनी वाणी गुजर मारवाड़ी रे बाई डिलेम देवा आईनी ई सारी दाड़ो भाटा पाड़दाणी काल काबर वेरा आर दाड़े में एकड़ा अंगुली खिरवाड़े डेले डिले में देव केवड़ी धरसारे वेंडो अरे लबाड़ लबाड़ लबाड़ लबाड़ ई माया से फसायो छ बाई को काई करे छ बाई डिलेम देवारो अरे हूं हां करी एक छोरा हेट बैठो तो ऊ काई कि दो बाई डिलेम तो देव आरो लागो पांच पचास रुपया कड़े खसोड़ मिली छोरा पीसी काली दो को तो बाई का ही कहे वालो के देता नहीं कड़े बैठो तो छोरा खाएंगे तो घाल दो पीसी हाथ में काड़े नहीं गयो बाई काई कच गब्बे स्तोन डाकने खाता गब्बे स्तोन मरियामा खाता ये डिलेम तो देव आरो ये ना काई भी पाड़ेगे तो गब्बे डरणु पर लबाड़ से माया बड़ी कटूर से काठ कली जो खावत से अरे हकीम बिचारो कटकट दवा लगाओ अरे साधु सन बुमड़ी मारन के गए बोमलुनी सांगे तुका बोमलुनी सांगे तुका नाम

0: आदि शक्ति तेज कतरा दुगो कुल चुतोन
1: का का
0: हजार सूर्या भड़थानी
1: हाँ
0: अनु वो आदि शक्ति पर जगन माता पर जो हजार सूर्या लेड जर फेंके
1: हवा
0: को तो हजार सूर्या सकर खान हेड पड़ जाते है वेंडी आउडी बिली देवी तार माई कु घुस जाती है ये लबार लबार लबार माटी आंग हुबो तो ये छोरा पिसी काली अगर काली दी पिसी और माटी ने कहें कचरे
1: हाँ
0: हम करी ना वो कहें क्या लागो मार माल कन मन बला री श्री राम आयो यारी मद्दी करूं जो ये कचवच सांटा खोदू ये कचवच धूड़ पाड़ू ये कचवच मनद्दी करे यारी या करो हाँ। बेटा तारो बरो बर करू बेटा तारो कल्याण करू बेटा तो डबल उनू बेटा वाया की दे जना ये माटी यरो देव माटी यरो माटी वाया की जना सात फेरा भरना यरो माटी हो अब ये डीलर माए आओगे जना ये गोवर यारी हुई यरो बेटा हो
1: हाँ हाँ।
0: मसोबान गोनी छेनी सटवाई धनी छेनी
1: हसी
0: बाई दरवेजा है हाँ। खिलाड़ी कविता कु भुकम ये को टेम आओगे सा वो रे सारू तुगो भगवान नाम ले लो मारे प्रभु रो नाम लेता नहीं चौरिया सी चुका लो।

0: पट्टीर बाहर वा सामने कुण आओगे ब्रह्मा विष्णु महादेव अनुष्या घर आओगे अनेक निरंजन भिक्षा आए भाई आले अतिथा मुड़बर द्यावे मागे पुरे पहुन का तुकारा महाराज के गोच करण केताने भिक्षा भरला की याडी नूला कुल्या वाचो ढुंगळी भिक्षा तार मायर कोथी माहिती हुई जुगाल ठीक से गे माई पतिदेव अंतरदशी सुतो तो गड़बड़े थी कि काय के लागो काय गड़बड़ चाल रोच गड़बड़ काय छे नी महाराज भार कोई तुई आए छ मन काय केरे छ भुंगळी भिक्षा घाल केरे छ ऊ के लागो तारे माई वत चमत्कार तो करेन लगा नमस्कार म काय केरालो कोनी महाराज मोटो खेल से ही कोई बाटी नाक नाकेर छे नी तो न पूछता मोटो खेल से तू उठ हेड़ती हेड़ती उठाड़ वठाड़न बसार देनी पगे पर मातो मिल देनी पग धोनो पानी पील दी तीन ही देर पर पानी मार देनी तीनी देवर आवड़ा कोड़ा शिविर पीला नहीं वेगे म्याऊ म्याऊ म्याऊ करे लाग पाले में घाल देनी हाथे में हुंडा झला देनी पालनो हराती बेस की केर जरे पर बेटी है वेंडी डीले माया तो कहीं कुर्सी देवे धोकेन गीती कहीं
1: कोनी कोनी
0: अये तू आसत भले धुनी पर मातो पटकले छी माटी कुम बोले छी माटी थी तो सुधो बोले मुंडो भरन बोल माटी ने एवडी धुनी धोकचन एवडी माटी कुम बोले छ धोसे मुंडे रा हरेगार जाबड़े रा मरियामा खाईनी याड़ी पाड़ेनी हिरण काई मारसा मुड़ो फिर जणीवी है काई सारी तांडे लान ये न घाल दू काई सारी तांडे लान घाल दू के जिन धूनी पर मातो पटके छी धूनी पर मातो पटका लोई काले दवा खाने माई जर मीना बरो सुती तो नियाड़ी साई वे ने करण के

0: नारद स्वामी चलो गोरे वो तो गिरजा साइत्रा लक्ष्मी कना ये वेंडी जावे नानका नानका छिछा करन पाड़ मेरी झोली में जाना बलाला तुम्हारे पति देवे ना
1: खरोच खा
0: अरे गिरजा साइत्रा लक्ष्मी आई रे अनुसुईया माता कना ए जलमा देवाली चुकवे को हमारो पति दे दा हमें ना ले जा तुम्हारो पति ये बेटे ले जाओ वो के लागी प्रभु राम ले जामा बात खर्च मारो कालो तो न तारो काबरो मन डिगरा दो भूल पड़ जाए कुंकरिया ए जलमा देवाली माता तू चढ़ गई हम हार गई हमारो पति हमने अंदर ए गिरजा इधर तारो भगवान शंकर ए साइत्रा इधर तारो ब्रह्मदेव ए लक्ष्मी इधर तारो विष्णु आशी धाटी महाराज होटो देखन लार देखन आगन हास अजी नानके नानके शिचार करना के तो काई क्रिया आगन के पर तो तीन ही वचन दे गए दत्तारो अवतार वे तानी मोहर गणेर माई जल में लीदे कोला प्रेम माई भिक्षा की दे घानगा प्रेम पांच मिनट बैस गए अनि निद्रा दुगा जी जुगो मोहर गणे न कर अपना खेल तमारवाई छात्री ताकन मारी जल में जड़ी माताम छ पर काई करू लागत।

सेवा की दिरे संडलिया माता। अरे तीन दार सूर्यान थमातानी ब्रह्मदेव कने थी। अरे वो तो पति देवे ने होटो लाई। अरे सूर्यान तीन दार थमाई।

0: छोरी बेथि मायरी आतरे भार दखाणु तलवारे धार वरो मालक कसोते वेंडी
1: कसो वेतो
0: गोडे ती टांगे छनी पीली ती हाथ छनी केला पासरो दु कोड्यालो रे कोड्यालो वो कोड्याले ती वाया लागरो वो कोड्याले न काय करे प्रभु कर्म रेशा चुकावे चुकना बाण लागली रे जगजीवना हे कृष्णा मारे नसीबे मारो मारो मालक काळो रो आंधो रो लंगडो रो खुळो रो मारे नसीबे मसकन के काय करे ओळडी बसार ताणी वो कोड्याले उंगळी घाल आणि पाणी छेटी मेल द आणि वो पाणी तीन पसी पिवा असे 12 वर्ष दाडो सेवा केली
1: वाह भाई वाह
0: भारवर सेवा की दे दार बाटी नालती माई बेटी
1: आणि
0: ही जो को भारवर पति देव बेटो तो वेशा नामेर बाई जो वर गली माई जारी थी वोने देख ली दो आणि लंगडो काही की दो गप से तो को सो गो मालकन बाटी माटी करता ने सांड लिया भाई आई ऊट पति दे बाटी खो खाऊ नी म का खाईस नी का खाऊ नी जो को वसंत ये ले वचन देख अपने घरे मुंडा गे जो को मखना ही कोन दियो तो आज एक भाई की बाई रूपवान सा वो बाई सामन ले जो तद मैं बाटी खाड़ नहीं तो मैं मर जाओ बाई के ला घोड़ो लंगड़ो जो लंगड़ो गामे कि नहीं चिरे नहीं घोड़े ती टांगे छेनी कूनी ती हाथ छेनी कोनी कुछ तो अत्रादार सेवा के दी मार निष्फल से निष्फल से जेती कुणस बाई से कहीं सो खो बाटी में जाऊँ सू बाटी खरा देनी आर दारे मौलत ले दी आन बाई धूण ताणी काली दी आन बाईर घरे मुंडा न मालन था कहीं करे लागू।

0: गोपाला गोपाला प्यारे नंदलाला पर एक दाड़ू भाई काई की दी
1: हां
0: ई गोपाला गोपाला करे वाला कुण तक के ने वन पकड़ी दी काए छोरी काई कर री छी भाई काई कर री में कुछ है मन वचन द ये लो वचन काई कर री छी ई देखे भाई मारे घरे मुंडा जे तू गीती के छे हार दाड़वेगे पछ मारो मालक तो देख ली दो छ अन वो भाई साहब लेगी तो ठीक नींद में फांसी खान मर जाऊं करे थे यारी मारो सोने सिर को माटी मर जाए येरो माटी सोने सिर को बे तो कहीं जन्म देवाली माता गोरे ती टांगे छेनी कुणी ती हाथ छेनी केड़ा नहीं पाथरो जेने मारो सोने सिर को क्यों सोने श्री केरी तम भी कहीं करो पगू पड़न कुछ हाथ जोड़न कुछ तुम्हारे नसीबे ने आंदो मड़ो लंगड़ो मड़ो खुड़ो मड़ो आचो मड़ो नसीबे रो खेल छ तो वो न मारो देवग्रह समझी तो तुम्हार स्वर्गीय माई घंटी वाज आए करण के तानी वो माटी ने जो वचन दिया वो केला भाई कहीं हरकत छे नहीं तारो माटी मेल द मेल दू छू पण भाई ये नमूनो आरो छो कू मेलू ऊ केला मैं वेश्या छू मारे घर तो सावथन दस जाओ छ एक आनी टेमे ने फलाना कोडाओ घर जाओ को तो मारो धंधो पड़ जाए बंद यारी रात बार वाता लिया है पति देवेर सेवा करे सारू मालके ना जोकवर विचार पूर्ण करे सारू वोल्डिम घाले तानी भारत जारी पण भगवान मारो नीला रंगेरो घणु खेलिया छ देव घणु गोपाल कृष्ण घणु खेलिया छ देव रंगारी रंगारी देव रंगारी रंगारी 16,108 नारी।